प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते,

ओम नमः शिवाय, ओम हर हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय हो। ऑल प्लीज स्टैंड फॉर आरती, एवरीबडी उठो सबको, प्रिपेयर फॉर आरती। वो लॉग्ड इन, प्लीज लेट योर डे इन दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम इन रिमाइंड बुक ऑफ फ्लावर। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू, भगवान वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, लेट भगवान ब्लेस यू।

की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की दंव जय जय सीताराम। और सच कंफर्टेबली आराम बैठिए आप लोग। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।

उमापति महादेव की जय। भगवान शिव लोलित है ये पड़े। एवरीवन प्लीज स्टैंड फॉर आरती, यू कैन कम इन ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज फॉर आरती एंड सो ऑन। आई लॉग इन टू आरती दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू, श्री राम वांट्स टू ब्लेस यू, लेट हिम ब्लेस यू।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

तो इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं, तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे। तू सच में चांद है यार, नूर भी, गुरूर भी और तू

प्रिंसिपल श्री उमापति महादेव की जय, पवन पथन मान की जय, महाशक्ति नव दुर्गा माता की जय, श्री अमर रामचंद्र की जय। भक्त जनों, पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है आरती से उसकी पूर्ति होती है। आरती करने दिखने और सुनने में समान पुण्य होता है। तो आइए हम सब इसमें भाग लें। पूजा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेथ और लव और डिपेंडेंस। आरती इज द वेविंग ऑफ द सेक्रेड लाइट। By observing arati, listening to arati, performing arati, saman punya hota hai, great merits come. To aaiye then, let us all please stand and bow in the presence of the devotees and deities as we now have Shiva arati. Satyana.

पशूनापतिम वंदे सूर्यशांक नयन वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाशयं शबरदं वंदे शिवं शंकरं ओं शांताकारं शिखरशयनं सर्पहारं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकांतं मदनदहनं।

श्री सुत जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि करके उस चरित्र को सुनिए कि जो उन्होंने विश्वानर के घर में अवतार लिया है। पर्व समय में नर्मदा नदी में तट पर नर्मक नामक एक रमणीय नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्र को वेता और शिव जी के चरणों में निपुण था। लोकाचार चतुर था। पश्चात एक सुचिष्मति नामक ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह हुआ। ओम नमः शिवाय। एवरीबॉडी।